0: Again, Kalyan has declared that he cannot function within the TMC fold as long as Abhishek Banerjee remains. It is a choose me or stay with him warning for Mamata Banerjee. This comes after TMC MP Prakash has also resigned from his post as well from the party. The former TMC MP said that he was not happy with the way TMC was functioning. Remember, this has been the charge by several of the rebel MLAs and MPs, and the exodus continues. The following question that remains big is, what will Mamata Banerjee do and how many of the TMC MPs and MLAs are in fact with Mamata Banerjee? Sample the reactions.
1: राज्यसभा एमपी प्रकाश सिंह बराइक हमारे साथ हैं. सर, कुणाल घोष कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं ये लोग, डी गैंग के मेंबर्स बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग रिजाइन करने करते जा रहे हैं.
2: क्या मैं किसी के पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता.
1: अपॉर्चुनिस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं लगातार इन लोगों
2: की, कोई टॉपिक में बात नहीं.
1: अच्छा, आपकी क्या वजह रही?
2: मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया.
1: सर, ये तो पहले भी हो सकता था, इलेक्शन से पहले. इलेक्शन के बाद क्यों हुआ?
2: इलेक्शन के बाद बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है. 34 साल लेफ्ट के समय में भी कोलैबोरेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला. ये 50 साल का जो सफ़र है इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था. अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा ये सबको मालूम.
1: ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दुखी है कहीं ना कहीं?
2: मैं दूसरा कोई टॉपिक में नहीं.
3: ग्रेट ह्यूमिलेशन टू मी. हिज एरोगेंट एटीट्यूड हैज डिस्ट्रॉयड द एंटायर पार्टी. ही शुड अंडरस्टैंड दैट. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now did he decides what should be done?
4: Kalyan, jo Paschim Bengal ki sthiti hai, वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है. आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद, और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं. शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात को लोगों तक रख पाए. और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी.
5: Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters.
0: But not all is hunky-dory for Mamata Banerjee. In fact, TMC MP Shatrughan Sinha spoke exclusively to my colleague Mano Gyalowal, where he said that he is not going anywhere. Remember, there were reports during the round that Shatrughan Sinha is also among the rebel MLAs and MPs. But so far, Shatrughan Sinha has on the record came and clarified that he stands with Mamata Banerjee, even though he praises PM Modi. Take a look at this interesting conversation.
6: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी. आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ. सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
7: मेरा ख्याल है सब ठीक है, और आपको ज्यादा पता होगा. आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है. मुझे लगता है आपको पता होगा. जहां तक मेरी जानकारी है, ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है, और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है.
6: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
7: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूँ. जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था, जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था. सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी

0: सामने आई थी, मेरी हौसला अफजाई करने और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि मैं जाके चुनाव लड़ूं आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था और देश में एक ही उपचुनाव था। वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबों को पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3 लाइन व्हिप अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं।
1: शत्रुघ्न जी, आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। कोई कारण है, कोई मंशा?
0: आप जानते हैं, मैं अपनी अस्पष्टवादिता के लिए, स्पेड को स्पेड कहने के लिए, अपनी अपनी बातों को सहज तरीके से लेकिन बोल्ड और बिंदास तरीके से सामने रखने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, वो सोच समझ के करता हूं, बगैर किसी स्वार्थ के करता हूं। और जब आज 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के भी है, देश के हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का जो शायद सबसे ज्यादा लंबा अवसर, लंबा समय प्रधानमंत्री के तौर पे जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता था, मेरा मैं समझता हूँ मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैंने प्रधानमंत्री को ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने उनको विश किया, ग्रीट किया, गॉड ब्लेस किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया।
1: आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस बारूद से, उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये कौन सा बारूद है जो तृणमूल कांग्रेस में फट रहा है और इतनी चिंगारियां निकल रही हैं, इतनी आग निकल रही है?
0: उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या मैंने शुरू में कहा कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ टफ गेट गोइंग, मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। हमारी ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। उन्होंने संघर्ष करके इस पार्टी को सींचा है, बनाया है, निर्माण किया है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस काडर को मजबूत किया है। उनको ये पार्टी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे लड़ाई लड़के
1: जी
0: उन्होंने हासिल की है। और तभी ममता बनर्जी ने 35 सालों तक करीब करीब जिस पार्टी का शासन रहा बंगाल में, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई और इतने सालों तक आज उन्होंने शासन किया। और अभी भी आने वाले दिनों में लोगों की बहुत अपेक्षा है, देश की और बंगाल की इच्छा और अपेक्षा की प्रतीक है हमारी ममता बनर्जी। इसलिए आप देखिए, मैं कह सकता हूं, आपने फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया तो मैं फिल्मी भाषा में ही कह सकता हूं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या।
2: Landed in the beautiful state of Andhra Pradesh, which has no shortage of its own superstars, and that's why it's our pleasure to be joined today on NDTV by Pavan Kalyan, the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Good to have you, sir. You were recently denied permission, sir, on Telangana Formation Day.
3: I think somehow they're scared. Otherwise, there is no need for them to deny permission.
2: Is the India bloc, you know, up on its last legs?
3: I had seen in my family, they were very strong supporters of Congress. As long as Indira Gandhi was, even to an extent Rajiv Gandhi was there, they could slowly, but the disconnect started because of their policies. I really expected some kind of a greater understanding when this man, Mr. Rahul Gandhi, if I go and meet people, that gives me a very entire greater understanding, greater depth. But I felt after walking from Kanyakumari to Kashmir, and the way he understood, he made, then I said he has become more shallow.
2: You know, it was genuinely a first day, first show kind of perfect political storm for Vijay. What went through your mind when you saw it unfold?
3: I came to politics in 2007. And from then...
2: Two decades.
3: Two decades.
2: Yeah, amazing.
3: And it was a tough journey for me. And sometimes I felt like giving up. Sometimes I feel like, why the hell I did? I was in politics. I wish I could have such kind of smooth journey like Mr. Vijay. In that way, I said, okay, I was envious. Yeah.
2: You have a good relationship with the BJP and especially with Prime Minister Modi.
3: This man is the future of our country. Mm. And we need it.

0: Honorable Member Parliament Abhishek Banerjee in the signature forgery case. Abhishek Banerjee has been grilled by CID for over 5 hours, is what we're learning so far. Remember that he was questioned in the LOP selection signature row. That's the latest update that we have for you coming in at this hour from West Bengal. As trouble seems to mount for the TMC, the CID has quizzed Abhishek Banerjee in the signature forgery case. My colleague Hrithik Mondal joins us with the latest updates coming in. Hrithik, an important update coming in from West Bengal, where we're learning that the CID has grilled Abhishek Banerjee for over 5 hours in the signature forgery case. Walk us through the details. Where exactly does the case stand?
1: Well, definitely, let me tell you what happened. Following a court order, Abhishek Banerjee, TMC MP and All India National General Secretary, had to appear for the probe team with regard to the alleged forged signature case for the appointment of the Shobhanadeep Chattopadhyay as LOP in the 18th Lok Sabha Assembly constituency. And the top leader of the Trinamool Congress Party was grilled for over 5 hours at the headquarters of the CID Bani Bapun, precisely in Kolkata. But what we do know that Abhishek Banerjee refuses to make any comment, because remember earlier in several occasions when Abhishek Banerjee was grilled by central agency during the Trinamool regime, we did see that Abhishek Banerjee did an elaborate press conference once stepping out of the questioning. But yesterday, very differently, he evaded all questions raised by media person, and also he directly headed to Mamata Banerjee's Kalikat residence. So what we do know that as far as the CID sources are concerned, Abhishek Banerjee was being grilled over several issues.
0: All right, Hrithik, thank you so much for joining us and sharing those updates with us. We're tracking the latest updates coming in at this hour on this very story. Well, the Trinamool Congress is staring at its biggest internal crisis in years, with the battle now shifting to a crucial question. Who really controls the party and where do the numbers lie? The rebel camp claims the 20-member parliaments have to breakaway move and signed a letter to the speaker, while Mamata Banerjee loyalists insist that many of those leaders still remain in touch with the party and could return. At the heart of the rebellion is growing anger against Abhishek Banerjee, with several rebel leaders accusing him of arrogance and excessive control within the organization. Even as another member parliament exits and pressure mounts on the leadership, senior leaders like Shatrughan Sinha, Babul Supriyo and Pratima Mondal have rallied behind Mamata Banerjee, setting the stage for a high-stakes showdown within the Trinamool Congress.
2: Ab tak 20 hai, lekin zyada bhi ho sakta hai, kyunki log hamare sath baatcheet kar rahe hain. और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी, क्योंकि हमारा काम भी बाकी है. अभी अब तक 20 है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं. और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी, क्योंकि हमारा काम भी बाकी है. अभी
3: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी. आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ. सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
4: मेरा ख्याल है सब ठीक है, और आपको ज्यादा पता होगा. आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है. मुझे लगता है आपको पता होगा. जहां तक मेरी जानकारी है, ममता बनर्जी का नेतृत्व तो बना हुआ है, और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है.
3: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
4: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूं. जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ के घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था, जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था. सबसे पहले ये देश के सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने, और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भैया के चुनाव लड़ू आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था. और देश में एक ही उपचुनाव था, वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबों को पता है. तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी. तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3 लाइन व्हिप अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं।
5: आज एक और तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, हमारे साथ है सुखेंदु से कर रहा है। दादा, आपने पहले दिन जिस दिन इस्तीफा दिया था उस दिन कहा था और लोग भी छोड़ेंगे, तो आपकी बात तो लगता है सही साबित हो रही है।
6: मैंने तो पहले ही बोल चुका था 10 दिन पहले कि पार्टी उठ जाएगा। जैसे कि विधानसभा में हुआ हमारा बंगाल में, 80 चुनाव में जीता, 64 चला गया और उसका असर पड़ा लोकसभा में, अभी 22 मेंबर चले गए। तो मैंने तो पहले ही तय किया था कि मैं भी छोड़ दूंगा, पार्टी भी छोड़ दूंगा और राज्यसभा भी छोड़ दूंगा। छोड़ दिया, मैंने इस्तीफा दिया था 8 तारीख को। 10 तारीख को मतलब सुष्मिता देव, आज प्रकाश सिंह बाड़ी, अब कल किसका बाड़ी है, परसों किसका बाड़ी है, देखते रहिए।
5: तो आपको लगता है कि अभी और लोग भी इसमें से निकलेंगे? हाँ, इस जहाज को और लोग छोड़ेंगे?
6: जरूर, जहाज तो डूब गया, तो जान बचाने के लिए तो लोग तो निकलने का कोशिश करेगा ना, निकलने का कोशिश करेगा,
5: तो और लोग भी निकलेंगे। अभी
6: जो लोग डूबते हुए जहाज में रह जाएगा वो डूब के मरेगा।
0: Well, let's bring you more updates coming in at this hour. While the political crisis within the Trinamool Congress is now intersecting with a legal battle. In the alleged fake signature case linked to the LOP controversy, Abhishek appeared in fact before the CID before skipping the 3 earlier summons, with his questioning even stretching late into the night. His appearance came after the Calcutta High Court granted him interim protection from arrest while directing him to cooperate with the investigation. In court, Abhishek's defense was that the decision to elect the LOP was taken by the MLAs and that he merely forwarded the communication to the speaker in his capacity as the party's general secretary.
7: कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं ये बात तो ऋजु दत्ता भी बोल रहा है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रहा है, ये बात तो शताब्दी राय भी बोल रही है, ये बात तो काकुली घोष दोस्तीदार जी भी बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया, पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे और पार्टी छोड़ के अगर बाहर जाके बोलने जाओ या मीडिया के सामने कुछ बोलो तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के केस डाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर नारकोटिक्स के गांजा के केस डाल दिए जाएंगे और उसके उनके परिवार को तबाह कर दिए जाएंगे।
0: Let's move on to more updates coming in at this hour. While a political storm has erupted over Rahul Gandhi's latest attack on the Prime Minister Narendra Modi. Rahul Gandhi is learned to have said that people across the country, from students to farmers to the poor, feel that the Prime Minister has ruined them, linking the sentiment to issues such as paper leaks, unemployment and economic distress. The Congress has defended the remarks, saying that they reflect the growing frustration, while party leaders have doubled down on the charge, saying that the government has failed India's youth and farmers. The Bharatiya Janata Party has hit back sharply, accusing Rahul Gandhi of fear-mongering, spreading propaganda and encouraging political unrest in the country. While the war of words has now escalated into a full-blown political showdown, with both sides trading sharp attacks over Rahul Gandhi's remarks.
8: गांधी ने कहा मोदी ने मरवा दिया, क्या वो कहना चाहते हैं?
9: अरे भाई, पेपर लीक जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? 79 बार पेपर लीक हुआ है, 48 बार पेपर कैंसिल हुआ है, तो किसकी वजह से हुआ है? कौन एजेंसीज़ हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं? एग्जामिनेशन सेंटर्स किसके हैं? ये कोरियर एजेंसीज किसके हैं? ये सब इन्हीं के लोग से जुड़े हुए हैं, तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? मोदी जी है ना, तो मोदी जी ने मरवा दिए पूरे सबको।
8: बीजेपी कह रही है कि ये डर फैला रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और ये क्या भाषा है ये? गाली
9: सरकार थोड़ी, किसकी सरकार है, कौन प्रधानमंत्री है? कांग्रेस की तो सरकार है नहीं।
8: बीजेपी लैंग्वेज पे आपत्ति जता रही है सर, भाषा।
9: अरे अभी जो बच्चों को आपने जो है, जो बच्चे गरीब लोगों के बच्चे जाके होटलों में रह के 3-3 दिन 4-4 दिन रह के पैसा खर्च करके रहते, वो वापस आ जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम उनका नहीं होता है, उनके भविष्य से ये खेल रहे हैं, उनकी तैयारी जो करते हैं उस पर पानी फेर रहे हैं, उनके उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं, तो कौन दोषी है इसके लिए? कांग्रेस दोषी है? अपोजिशन दोषी है? कौन दोषी है? एग्जामिनेशन सेंटर्स किसके हैं? कौन वोन करते हैं? वो सभी वो सेंटर्स के मालिक कौन है? ये एजेंसीज जो कंडक्ट करते हैं ये कौन है? ये जो कोरियर जो लेके जाता है क्वेश्चन पेपर ये कौन है?
8: हाउ कांग्रेस इज प्लानिंग टू कॉर्नर गवर्नमेंट ऑन दिस इशू सर?
9: सी इट इज वेरी क्लियर दैट नरेंद्र मोदी जी एंड धर्मेंद्र प्रधान आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. वी हैव आस्क्ड फॉर द रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री, नॉट जस्ट कांग्रेस पार्टी और एनी अपोजिशन पार्टी.
10: आप गांव के आदमी हैं और बेसिक रूप से आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ों से परेशानी होती है तो लोग यह बात जरूर कहते हैं कि इनका कारण हम मर गए. आप बताइए, नौजवानों के भविष्य के ऊपर डांका डाला गया है, लाखों परीक्षार्थी नीट के पेपर सीबीएसई के पेपर से हताशा और निराशा में जी रहे हैं, 10 साल में 89 पेपर लीक होना, क्या ये नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा नहीं है? नौजवान और छात्रों को मोदी ने मरवाया है कि नहीं मरवाया है? उनके भविष्य को मारा है कि नहीं मारा है? सरकार किसकी है? किसान आज घंटों लाइन में लग रहा है डीएपी और यूरिया के लिए. किसानों को मोदी ने मरवाया है कि नहीं मरवाया है? तो सिंपल सा लॉजिक है, मोदी ने किसान नौजवान और गरीबों को मरवा दिया.
11: राहुल गांधी स्टेटमेंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एक्सपोजेस हिज पॉलिटिकल एनार्किस्ट अप्रोच एंड एक्सपोजेस दैट ही इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल एनार्किस्ट. ही इज अनहैप्पी दैट इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ग्रोइंग विद 7% ग्रोथ रेट. ही वांट्स टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन दिस कंट्री. ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट एंड द पीपल ऑफ द कंट्री हैव सीन थ्रू राहुल गांधीज agenda and toolkit. His recent statement further exposes that Rahul hates India, Rahul hates India's stability and Rahul hates India's democracy.
12: जिस प्रकार से राहुल गांधी ने फिर से एक कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, कहा है मोदी ने मरवा दिया. ये वही लोग हैं जो मोदी जी को गालियां देते हैं, 150 से ज्यादा गालियां दी है, मोदी की मौत होगी, मोदी की कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, हिटलर की मौत मरेगा, लाठी डंडे से मारो मोदी को, ये कहने के बाद जहरीला सांप है मोदी, ये कहने के बाद अब एक और ऐसा बयान. राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और पैनिक क्रिएट करना, फियर मॉन्गरिंग करना, यही इनका काम है. तो ये कोविड वैक्सीन पर पैनिक क्रिएट करते हैं, ये इकॉनमी को डेड बोलकर पैनिक क्रिएट करते हैं, ये भारत की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे पैनिक क्रिएट करते, कहते डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, इंटरवीन होना चाहिए यूएस यूके के द्वारा, और अब किस प्रकार से आग लगा देंगे, केरोसिन छिड़क दिया है, ये बयान देने के बाद सिख जो है टर्बन नहीं पहन सकते, इस प्रकार का बयान देने के बाद अब राहुल गांधी फिर से फियर मॉन्गर कर रहे हैं.
0: We'll check in some breaking news coming in at this hour. We're understanding that comedian Pranit Mohr has now been booked in his ₹370 biryani remark row. That's right, trouble seems to mount for the comedian Pranit Mohr after a case has been filed against him and as well as Himanshu Jagra. That's the latest update that we have for you at this hour. Remember that this was a controversy that erupted during a comedy show. The comedian for which was Pranit Mohr, he's been booked in the ₹370 biryani remark row, a remark that was in fact making the rounds on social media as well for its nature that it was distasteful. Trouble seems to be mounting for the comedian as he too has in fact found himself in fact a problem over here, as there's been a case that's been filed against him as well as Himanshu Jagra. My colleague Sujata joins us on the broadcast. Sujata, of course, an important update coming in. The comedian Pranit Mohr has been booked in the controversial remark case. Help us understand, what are the charges that he's currently facing?
13: Well, certainly, and problems keep on mounting, has been mounted for comedian Pranit Mohr and Himanshu Jagra for the remarks that were made during a concert show. And under Section 370, they have been booked for the obscene and objectionable remarks that were made against the dignity of women, is what has been mentioned in the FIR. Not just the FIR, but also on social media, we see that the anger has been mounting up for the comedian for the remarks that were made. And also, the 370 biryani joke is now all over. But not only that, the police is also trying to investigate at the other jokes and the other sequences of the show, so that action if needs to be initiated, any other remark that was made, that could also be done so. Because a clip that is now getting viral on social media in which another social media influencer, reportedly a female, has made objectionable remarks against men by profession. She happens to be a doctor, and within that, she has made certain jokes.

0: know that we should support regional parties in the state governments, and then only all these regional parties would support them for the Congress to capture power in the center. That they don't know. That is the problem with Rahul Gandhi.
1: अरे कैसी बात कर रहे हो और कैसे होने चाहिए, मरवा दिया फांसी पे चढ़ाएंगे क्या? मरवा तो दिया ही, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, बाहर जो लोग रोजगार के अंदर गए वो परेशान है। आप स्थिति समझिए ना क्या है, मिडिल ईस्ट की जंग से किसको नुकसान हो रहा है, कितने लोग मिडिल ईस्ट में है, देश की अर्थव्यवस्था को चूल हिला दिया आपने, देश की अर्थव्यवस्था की चूल हिल गई है।
2: आप गांव के आदमी हैं और बेसिक रूप से आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ों से परेशानी होती है तो लोग यह बात जरूर कहते हैं कि इनका कारण हम मर गए नहीं। आप बताइए, नौजवानों के भविष्य के ऊपर डांका डाला गया है, लाखों परीक्षार्थी नीट के पेपर, सीबीएसई के पेपर से हताशा और निराशा में जी रहे हैं, 10 साल में 89 पेपर लीक होना, क्या ये नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा नहीं है? नौजवान और छात्रों को मोदी ने मरवाया है कि नहीं मरवाया है? उनके भविष्य को मारा है कि नहीं मारा है? सरकार किसकी है? किसान आज घंटों लाइन में लग रहा है डीएपी और यूरिया के लिए, किसानों को मोदी ने मरवाया है कि नहीं मरवाया है? तो सिंपल सा लॉजिक है, मोदी ने किसान, नौजवान और गरीबों को मरवा दिया।
3: Rahul Gandhi's statement against the Prime Minister exposes his political anarchist approach and exposes that he is nothing but a political anarchist. He is unhappy that India under Prime Minister Narendra Modi is growing with 7% growth rate. He wants to create a democratic deficit in this country. He wants to fight the Indian state, and the people of the country have seen through Rahul Gandhi's agenda and toolkit. His recent statement further exposes that Rahul hates India, Rahul hates India's stability, and Rahul hates India's democracy.
4: जिस प्रकार से राहुल गांधी ने फिर से एक कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, कहा है मोदी ने मरवा दिया। ये वही लोग हैं जो मोदी जी को गालियां देते हैं, 150 से ज्यादा गालियां दी है, मोदी की मौत होगी, मोदी की कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, हिटलर की मौत मरेगा, लाठी डंडे से मारो मोदी को, ये कहने के बाद जहरीला सांप है मोदी, ये कहने के बाद अब एक और ऐसा बयान। राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते हैं लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और पैनिक, पैनिक क्रिएट करना, फियर मॉन्गरिंग करना, यही इनका काम है। तो ये कोविड वैक्सीन पर पैनिक क्रिएट करते हैं, ये इकॉनमी को डेड बोलकर पैनिक क्रिएट करते हैं, ये भारत की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे पैनिक क्रिएट करते, कहते डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, इंटरवीन होना चाहिए यूएस यूके के द्वारा, और अब किस प्रकार से आग लगा देंगे, केरोसिन छिड़क दिया है, ये बयान देने के बाद सिख जो है टर्बन नहीं पहन सकते, इस प्रकार का बयान देने के बाद अब राहुल गांधी फिर से फियर मॉन्गर कर रहे हैं।
5: अरे भाई, पेपर लीक जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? 79 बार पेपर लीक हुआ है, 48 बार पेपर कैंसिल हुआ है, तो किसके वजह से हुआ है? कौन एजेंसीज हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं? एग्जामिनेशन सेंटर्स किसके हैं? ये कोरियर एजेंसीज किसके हैं? ये सब इन्हीं के लोग से जुड़े हुए हैं। तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? मोदी जी है ना, तो मोदी जी ने मरवा दिए पूरे सबको।
6: बीजेपी लैंग्वेज पे आपत्ति जता रही है सर, भाषा।
5: अरे अभी जो बच्चों को आपने जो है, जो बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे जाके होटलों में रह के 3-3 दिन 4-4 दिन रह के पैसा खर्च करके रहते, वो वापस आ जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम उनका नहीं होता है, उनके भविष्य से ये खेल रहे हैं, उनकी तैयारी जो करते हैं उस पर पानी फेर रहे हैं, उनके उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, तो कौन दोषी है इसके लिए? कांग्रेस दोषी है?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
6: Really?
5: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर प्योर मसाला।
10: This is where the future shows up first. Conversations with the biggest names in tech and AI.

0: Exactly 1 year ago, the sky over Ahmedabad became a nightmare that would forever haunt several lives. Hundreds of lives shattered in a single catastrophic flash. Air India Flight 171 tore through the BJ Medical College hostel complex. The physical scars of the disaster remain etched into the landscape. The gaping hole where the plane entered the building shows the impact of one of India's deadliest aviation disasters. Among the 260 people killed were Rajnikant and Pushpaben Darji, an elderly couple from Kheda who were flying to UK to meet their son. But fate failed this reunion. This was a couple that had never stepped foot outside Ahmedabad before that ill-fated day.
1: उनकी वाइफ थी
2: दोनों कपल
1: दोनों का
2: कहाँ जा रहे थे वो लोग
1: लंदन घूमने जा रहे थे लड़का इनका वहाँ पे डॉक्टर है अच्छा। तो घूमने बुलाया था पापा आप आ जाओ अच्छा। और उसने टेलरिंग करके दर्जी काम करके डॉक्टर बनाया था उसको अच्छा। घूमने बुलाया था जा ही नहीं सका
3: ऐसी प्रार्थना की बात तो हमें कुछ उसके पास हमें नहीं खुदा ने हमारी बात नहीं सुनी और मेरी बहन भी है और मेरी देवरानी भी हमारी छोटी बहन वो भगवान को नहीं अच्छा लगा दोनों को साथ ही ले गए
0: गुजराती फिल्म मेकर महेश जीरावाला वाज पासिंग बाय द रोड नियर द हॉस्टल व्हेन द प्लेन क्रैश्ड एन अनस्क्रिप्टेड मोमेंट ही नेवर ड्रीम्ड ऑफ हैपनिंग द 34-year-old फिल्म मेकर वेंट मिसिंग आफ्टर द क्रैश फैमिली फाइल्ड मिसिंग कंप्लेंट Cops traced his phone location to the crash site and then after 8 days, his body was identified through DNA matching.
4: तो ऐसा नहीं होगा कि प्लेन क्रैश में आ जाएगा मेरा भैया फिर उसके दोस्तों से बात की तो उसका फ्रेंड सर्कल भी ऐसे बोला कि वो तो निकल गया था यहाँ से उसके बाद मैंने एक मेरा फ्रेंड था उसके पास मैंने लोकेशन निकलाई वो लोकेशन लास्ट पॉइंट आया मेघानी नगर का जो ब्लास्ट से 400-500 मीटर दूर था उसका लोकेशन तो उसने जो ब्लास्ट वाला एरिया था वहाँ से हमने एक्टिवा का इंजन नंबर और 36 नंबर उसने निकाला वो साहब ने और वो मैच हो गया
5: हम बाप बेटे जैसे नहीं रहते थे हम दोनों दोस्त जैसे रहते थे वो उसकी एक तमन्ना थी कि पापा पहले मैंने नाम कमाना है
0: While victims continue to deal with the pain of losing their loved ones, in the June 12, 2025 crash, the chorus of justice grows stronger and the victims are searching for answers. The prelim report released by the Aircraft Accident Investigation Bureau in 2025 has hinted at dual engine shutdown, but did not assign blame to any individuals or point to a definitive cause.
6: टाइमिंग्स उन्होंने दिए हैं वो टाइमिंग्स जो इंजन कब फेल हुआ उसका और कैसे एक सेकंड के अंदर दोनों इंजन बंद हो गए तो उसका हमने खुलासा किया कि वो टाइमिंग जो टेक्निकल जो भी इंफॉर्मेशन है मैन्युफैक्चरर्स के पास वो उसके तहत नहीं है
0: One year on, the wreckage may have been cleared, but the scars remain etched forever. Bureau Report, NDTV.
7: Let's turn our attention to the tragic incident being reported from the Strait of Hormuz that involves the Palau-flagged vessel as well. Three Indian sailors initially reported missing were confirmed dead after their bodies were recovered and identified. The deceased have been identified as Aditya Sharma, a deck cadet, Shivanand Chaurasia, an engineer fitter, and chief engineer Patnala Suresh. They were killed after a vessel was attacked by US forces off the coast of Oman earlier this week. And a video has also surfaced showing the Indian crew issuing a distress call after it was hit by a US missile off Oman, saying the ship was on fire and sinking. Meanwhile, the US Central Command has released a video of this attack, and the Ministry of External Affairs has once again condemned this attack while informing that a strong protest is being lodged through diplomatic channels. But the families, they are grieving. In fact, Shivanand Chaurasia

0: Rasya's family was left devastated after they got to know that he was among the three Indian sailors who have been killed, while 23-year-old deck cadet Aditya Sharma's family remains in shock following this tragic incident.
1: ఆఫ్టర్నూన్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, బాడీ రికవర్ చేసి అన్నీని ఇన్ఫార్మ్ చేయడం అయితే నైట్ ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, ఫాలోఅప్ చేశారు, ఇంటిమేట్ చేశారు, అంతా వెల్ అండ్ గుడ్ బాగానే ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. సో నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్దర్గా అతని బాడీ ఏదైతే అక్కడ స్ట్రక్ అయిందో అది నాకు ఇక్కడికి త్రూ మీడియా, త్రూ ఎంబసీ, ఎవరైతే నాకు ఫేవరబుల్గా కొంచెం చేసి అతని బాడీని యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కొంచెం లోకల్ అతని నేటివ్ ప్లేస్కి తీసుకొచ్చే ఫేవర్ చేస్తారని నేను ఆశపడుతున్నాను.
2: जो अपनी सेवाएं अपने देश से बाहर जाकर भी दे रहा था, आज हमारे बीच में नहीं रहे. न केवल परिवार बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत दुख है इस घटना से. और हमने मांग भी की है विदेश मंत्री जी से और केंद्रीय जो हमारा विभाग है विदेश कार्यालय का, उनसे भी कि वहां पर कंपनी के साथ, वहां की एम्बेसी के साथ, वहां की सरकार के साथ भारतीय दूतावास इस विषय को उठाए और जल्द से जल्द उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान वापस लाए, ताकि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन उनका पार्थिव शरीर जल्द से जल्द वापस मिले, ऐसा हमारा प्रयास है.
0: In other news, India's Indus water strategy has sparked a major political and diplomatic reaction across the board. After an exclusive interview by NDTV with Union Water Resources Minister C.R. Patil, that generated strong responses in Pakistan, because Mr. Patil had said India intends to fully utilize its share of Indus waters within the next 1.5 to 2 years, and asserted that not a single drop meant for India would flow to Pakistan. Soon after this, Pakistan's foreign ministry warned that any attempt to restrict water flows could be viewed as an act of war. Islamabad has described its water rights as non-negotiable and also vowed to defend them vigorously, stressing that the Indus River system is essential to their survival. But this exchange has further intensified the Indus waters debate as far as both our countries are concerned.
3: आपके मंत्रालय के पास एक बहुत अहम योजना है. जब ऑपरेशन पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आतंकी कार्रवाई की पहलगाम में, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो जल स्रोत थे उनको काटने की बात भी कही गई. उसमें एक सिंधु जल समझौता बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, सिंधु नदी पर है. भारत सरकार ने घोषणा की कि अब हम पानी यहाँ का सिंधु का पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, हमारे इलाके से नदी गुजरती है, हम इसको रोकेंगे. कब तक ये पूरी तरह से ज़मीन पर उतर जाएगा कि सिंधु का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाए?
4: देखिए, माननीय मोदी साहब की सरकार ने जो TT थी उसको एवेंस पर रख दिया है. ये पानी को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंदर जो अभी तक वहाँ जल संचय की व्यवस्था नहीं थी वो डाइवर्ट करने की भी भौगोलिक स्थिति में थोड़ी मुश्किल है. मगर मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा आपको कि हम 1.5 से 2 साल के अंदर पूरा पानी डाइवर्ट कर देंगे. उसके पहले भी हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है और ये काम बहुत जल्दी होगा. इसके कारण कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जो पानी की कमी है वो पानी की कमी पूरी हो जाएगी.
3: जी, तो आज हम जब 8 जून 2026 को बात कर रहे हैं और आप 2 साल का वक्त ले रहे हैं, तो 8 जून 2028 में सिंधु का पानी पाकिस्तान पूरी तरह से जाना बंद हो जाएगा?
4: बिल्कुल बंद हो जाएगा, एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा.
3: तो पाकिस्तान प्यासा मरेगा और साथ में हथियार भी छोड़ देगा?
4: वो हम तो हमारे अधिकार का पानी है, हमारे लोगों को चाहिए. इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब चाहते हैं कि जहां हमारे यहां किल्लत है वहां पर पानी पहुंचना चाहिए.
3: तो इस खबर से तो पाकिस्तान में खलबली मची आएगी कि 8 जून 2026 के बाद सिंधु का पानी जाना पाकिस्तान में बंद हो जाएगा.
4: 28 के बाद?
3: जी, 8 जून 2028.
4: जी,
5: as stated by our at the top leadership level by Pakistan, any such act would be treated with utmost seriousness and could possibly amount an act of war under Article 51 of the UN Charter. Every state retains the inherent right to self-defense. Pakistan will take all necessary measures to safeguard its economy and its vital national interests and lives of its 250 million people. We call upon India to act responsibly, honor its international commitment, and refrain from statements and actions that would further escalate tensions in the region. Pakistan remains committed to safeguarding its interests, as I said, and we will closely monitor developments

0: of 19 MPs of the Lok Sabha from the TMC, who in fact have declared that they are the real TMC. They have decided to break away from the leadership of Abhishek Banerjee. Remember, you had the rebels saying very clearly, we have no problem with Mamata Banerjee, but a problem that we have is with Abhishek Banerjee. For a long time, that number was contested by the TMC. Kalyan Banerjee, Kirti Azad held a press conference 2 days ago and said, this is all up in the air. These are all numbers being floated by the BJP. But now 19 signatures accessed by NDTV. Among them is Trinamool MP Arup Chakravarti, who we spoke to just a while ago. Listen in to what he said about what is happening with these signatures, when these signatures were put down, and whether this letter has been given to the speaker yet. Listen in.
1: Arup ji, तो 20 नाम अब हैं असली टीएमसी के पास 20 नाम हैं
2: यस हम लोग सब सिग्नेचर करके दे दिया है समझे
1: आप ये बता पाए
2: टू सेव द प्रेस्टीज ऑफ द टीएमसी वी ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वी हैव साइंड ए पेपर एंड डिपॉजिटेड टू द ऑनरेबल स्पीकर एंड वन टू डिमांड टू एलेंट एलोटमेंट आवर सीट इकट्ठा हम बैठ के हम बात कर सके चर्चा कर दे सके सरकार का काम आगे बढ़ाने सके ठीक है ना हम सब एक मिल के करने चाहता है काम कि डबल इंजन का सरकार से कैसा काम बढ़ता है वो हमको देखना है
1: अच्छा आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं यानी कि आप बीजेपी में हिस्सा बन जाएंगे आप सब बीजेपी का हिस्सा होंगे आप एनडीए का हिस्सा होंगे
2: नो नो नो नो टीएमसी टीएमसी का काम करेगा बीजेपी बीजेपी का काम करेगा और द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम दोनों मिलके एक काम करेगा इफ रिक्वायर टीएमसी को बीजेपी सपोर्ट करेगा इफ रिक्वायर बीजेपी हमसे मदद मांगेगा हम भी सपोर्ट करेगा मिलजुल के हम काम करेगा
1: ओके लेट्स टेक दिस वन बाय वन मिस्टर चक्रवर्ती व्हेन डिड यू साइन दिस लेटर
2: बिफोर 3 or 4 days I am admitted at hospital. I am not getting any chance to appear there in the meeting. But when I came to know that our Honorable Chief Minister is coming from Calcutta to meet with the MPs, then I take 2 hours time from the hospital authority. And meet with them, with Shubhendu Adhikari and other leaders and other MPs, and sign on the paper.
1: You're saying you signed this letter 3-4 days ago. We were being told that this has been signed on the 18th of May. Can you please confirm that?
2: Pardon?
1: We were told that this letter had been signed on the 18th of May. Can you please confirm to us exactly when did you put your signature on this letter?
2: हमारा 8 नंबर में नाम था नंबर 8
1: आपका जी आपका 8 नंबर पे नाम है आपने 4 दिन पहले ही अपना नाम डाला है इस चिट्ठी पे
2: सेकंड डे हां
1: अच्छा 4 दिन पहले आपने डाला आपने स्पीकर को कर दिया
2: ऑन दैट पर्टिकुलर डे वी हैव साइंड मिनिमम 16 टू 18 नेम्स
1: When did you give this letter to the speaker, to the Lok Sabha speaker?
2: We have signed the papers and handed over to our leader, that is Kakoli Ghosh Dostedar.
1: Okay.
2: Okay.
1: Can you confirm if it has been given to the speaker yet?
2: On that time, Mr. Shubhendu Adhikari also with there, the Chief Minister of West Bengal, honorable guest. We have met with him also. And discuss it and fight. Okay?
3: भी हो सकता है क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी अब तक 20 है लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी
4: बस फेल हो गया है
5: नहीं ऑपरेशन लोटस तो होगा
4: अच्छा
5: हाँ होगा किसी तरीके से भी होगा आप देखो लिस्ट जो दी है पहले 8 अलग इंक में है उसके अलावा कोई माना नहीं 5 फिर एमपीओ को घर में पहले तो जो मान गए उसको 5 करोड़ दे दिया, 50 लाख दे दिया, और किसी ने कहा हमको साहब 10 लाख रुपया महीना दे दीजिए 36 महीने तक, वो भी डील हो गई। जो माने नहीं उसमें से कई फर्स्ट टाइमर थे, उनके घरों से सिक्योरिटी हटा दी गई, उनके घर में उनके उनका सिक्योरिटी हटा दिया, होम गार्ड हटा दिया, जैसा मेरा हटा दिया, उनको पीटा गया, बीजेपी वाले अंदर गए, पुलिस का प्रोटेक्शन रहा, मारा पीटा, परिवार वालों को किया, उन्होंने आके साइन किया। आप देख लो नेक्स्ट लिस्ट है 14 से 18, उसमें 3 मुसलमान हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे, मैं जाने दो, और कोई प्रॉब्लम है कोई। कल्याण बैनर्जी देखिए भावुक आदमी है, उनकी बात हुई है बट दीदी के ऊपर छोड़ दिया, बात सेटल हो चुकी है ऑलरेडी, बात खत्म हो चुकी है।
0: कीर्ति आजाद देयर वन ऑफ द एमपीज ऑफ द लोकसभा इन द तृणमूल हु स्टिल हैवंट साइंड एनी लेटर विद द रेबल सेइंग दैट दिस इज ऑपरेशन लोटस व्हिच इज बीइंग कैरिड आउट। ऑफ कोर्स यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजूमदार हु इन फैक्ट इज आल्सो एन एमपी ऑफ द बीजेपी फ्रॉम वेस्ट बंगाल सेज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द तृणमूल, दीज आर ऑल देयर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस व्हिच आर नाउ कमिंग टू द फोर। इन In the letter that has been accessed by NDTV, Kakoli Ghosh Dastidar has been named as the chief whip. The deputy leader is Shatabdi Roy. And then you've got others. The 3 Muslim MPs that Kirti Azad there was referring to, of course, are the 3 MPs who come from Murshidabad. And the breaking news is that Sukanta Majumdar has now spoken of the beginning of the end of the Trinamool Congress. Internal contradictions, dissatisfaction with the leadership, says Sukanta Majumdar, is the reason why you see more and more MPs, MLAs from the Lok Sabha, from the Raj Sabha, speaking up. Listen.
6: See, the rift in between the members of TMC, especially in the MPs, now it has become widened, and as a result, this kind of incidents are happening. And from the beginning, the senior leadership of TMC, they were not at all happy regarding the parachute landing of Abhishek Banerjee as a second most top leadership of TMC. So now these things are coming out because TMC is the out of the power.
0: All right, so very quickly to recap for our viewers, the 19 names accessed by NDTV, Kakoli Ghosh Dastidar, Shatabdi Roy, Bapi Haldar, Sharmila Sarkar, Prasoon Banerjee, Jagdish Basunia, Asit Kumar, Arup Chakravarti, and surprisingly also people like June Malia, Yusuf Pathan, and Deepak Adhikari, who so far were believed to be loyal to Didi, to Mamata Banerjee, and not be in the rebel group. Fast developing story. We'll keep a close eye. Time now for a very quick break.

0: date the merger.
1: एनसीपी का ऑलरेडी पहले ही प्रस्ताव था विलीन करना का, तो ऑलरेडी अभी सबको ये लगता है कि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्था को खत्म करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है, ये भूमिका अब सब राज्यों की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है। और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है।
2: मेरा तो मानना है कि ये पार्टियों का, संजय राउत का बात दम है, वक्त आ गया, अभी लड़ाई लड़नी है डेमोक्रेसी को बचाने की। डेमोक्रेसी को बचाने की जब लड़ाई युद्ध के मैदान में हम लोग हैं, तो संजय राउत का मैं सपोर्ट करता हूँ कि ये सब पार्टियों के जो रीजनल पार्टी बन गई कांग्रेस अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए और राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए दिल से, पहले से। पूरे मुल्क में ये मैसेज होना चाहिए, अब इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं, ये मैसेज क्लियर कट होना चाहिए, तब जनता आपको कामयाब करेगी। वो देखती है एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, ये क्लियर कट मैसेज होगा। तमाम पार्टियों ने मिल करके राहुल गांधी को नेता स्वीकार किया है, तो आप देखेंगे कि वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा देश के अंदर। वो अलग बात है, शिवसेना जो है वो कभी कांग्रेस अलग नहीं हुई थी, वो अलग ही पार्टी रही है, सीपीआई अलग ही रही है, उनको ऊपर में दावा कुछ नहीं कर सकते, ना उनको आग्रह कर सकते हैं। पर बाकी पार्टी जो कांग्रेस से अलग होके बनी है उनको सोचना चाहिए।
3: बघा प्रस्ताव है, आता त्यांचे इंटरनल प्रस्ताव काय असतील हा त्यांचा प्रश्न आहे, पण कांग्रेस हा अधिक मजबूत व्हायला पाहिजे देशामध्ये। काँग्रेसमधून निघालेले जे लहान पक्ष किंवा नेते आहेत त्यांनी देशाची परिस्थिती समजून घ्यायला पाहिजे आणि त्यानुसार एक मजबूत अशी काँग्रेस, अखंड काँग्रेस एक प्रबळ पर्याय म्हणून देशामध्ये उभी राहायला पाहिजे।
4: आधीसुद्धा शरद पवारांनी काही वर्षांपूर्वी हाच मुद्दा उपस्थित केला होता, त्या दृष्टिकोनात
3: पवार साहेबांनी या संदर्भात पुढाकार घेतला पाहिजे। माननीय शरद पवारांनी ही जी विचारधारा किंवा भूमिका बनते आहे एकत्र येण्याची, त्या संदर्भात जर त्यांनी नेतृत्व केलं, पुढाकार घेतला, तर हा विचार खूप पुढे जाईल।
0: All right, moving on to Karnataka now. There's some breaking news coming in. A high-level panel will be set up to probe the Bengaluru waste tender. Karnataka government has ordered a high-level probe into the allegations that have been made by the opposition as well. The panel will examine the tender process of ₹39,000 crore. The Bengaluru waste tender has been under the scanner, and the Karnataka government now has formed that high-level probe amid serious allegations made by Leader of Opposition R. Ashok over an alleged ₹39,000 crore scam in Bengaluru's waste management project. Ritu joins me live. Ritu, we had the Chief Minister come out and make a comment on the allegations made by R. Ashok, but now we're seeing that a high-level committee will be examining the tender process.
5: Well, very true. You see, this is a big breaking news that we are seeing right now coming from Karnataka. Just a couple of days after the BJP LOP R. Ashok came out to make this big allegation against the Congress-led government here in the state over that of a 39,000 crore scam. Now, this, more importantly, you see, you had the BJP LOP going on to highlight about a tender being given to one particular company which has already been blacklisted. Then why was there a tender that was provided to that particular community? Now, more importantly, you see, the BJP had in fact also alleged that not more than around 10,000 crore kickbacks were also received by this the state government. Is that the big allegation that's been made by the BJP LOP? Now you have the government therein being under fire and under scanner now that the high level probe will be taking place in this whole matter, because there's a panel that has whole been set up when we talk about this water waste management tender process as such. Now you see, the panel will be looking into multiple aspects. Now, one, of course, you see whether that this whole tender was processed for almost 30 years now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन,
4: TV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJ.

0: during the ISSF World Cup in Munich and again while returning to India. One of India's greatest shooters, Rana won multiple gold medals at the Commonwealth and Asian Games and was a world champion in the junior category. In recent years, he played a pivotal role in shaping India's next generation of shooters. Rana was widely credited with guiding Manu Bhakar's rise to the top of world shooting. Under his mentorship, Bhakar won two medals at the Paris Olympics, making him one of the architects of India's modern shooting success. His death marks a huge loss for Indian sport, with tributes pouring in from across the sporting fraternity as well. This has been a huge setback. Manu Bhakar, of course, is one of his students and has accomplished so much under the guidance of Rana. And this news has come as a huge setback to the sporting fraternity. This news came in this morning under his mentorship. Remember, Bhakar won two medals at the Paris Olympics, making him one of the architects of India's modern shooting success. His death marks a huge loss for the Indian sport. A lot of people from the fraternity expressing their condolences for Jaspal Rana, who died at the age of 49. And he had some procedures done earlier this year as well. And then came the news of the loss. All right, we have some breaking news also coming in. And this has to do with the Trinamool Congress. We're being told at this moment that the speaker will be meeting with the Lok Sabha. The Lok Sabha speaker, rather, will be meeting with the Rebel TMC MPs. That's the latest that we have for you. The Rebel TMC MPs have been waiting for a couple of days now to meet with the Lok Sabha speaker, Om Birla. But now that is to happen. This comes after we have also accessed the list of the Rebel TMC MPs, where there are 19 names. Sources also telling NDTV a 20th name could be added to that list. And that could happen in the next couple of days. But the big development at this hour is that the Rebel TMC MPs will be meeting with the Lok Sabha speaker on Monday. Is the correction there? Is when they're going to meet them. Very soon, our reporter will be joining us on the big story. But this is something that the Rebel TMC MPs had been waiting for. Earlier this week, the Lok Sabha speaker was not in Delhi. That was one reason why they couldn't meet them. But now, with that list firming up, and we have Aishwarya live with us. Aishwarya, what's the latest you can give us on this breaking news emerging? We're being told Monday is the day that the Rebel TMC MPs will be meeting with the Lok Sabha speaker.
1: Well, in fact, one of the Rebel Trinamool Congress MP, Jagdish Chandra Basunia, is with me. We will directly ask him, sir, Monday ko samay de diya gaya hai Lok Sabha speaker ki taraf se. Aap milne wale hain tamam?
2: Monday ko milne wale.
1: Aap se ye janna chahenge ki jo list aayi hai, jo signatures hue, wo kis tarike se hue, kya kuch process raha, kya kuch sansadon ka kehna hai, kya aapatti darj karai gayi, agar aap hamare darshakon ko bata sakte.
2: सब सांसद मिलकर हमने डिसीजन लिया कि हम स्पीकर को पास जाएंगे और अलादा गुट बनाने के लिए टीएमसी के अलादा गुट बनाने के लिए हम स्पीकर के पास दावा रखेंगे. इसलिए हम सांसद ने एक साथ मिलकर ये सही किया.
1: एक अलग गुट बनाएंगे और एनडीए को आउटसाइड सपोर्ट देंगे लोकसभा में. और आप तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी फैक्शन के सांसद हैं, तमाम जो लोग हैं, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद, उन लोगों के साथ में बैठना नहीं पसंद करें?
2: नहीं, एकदम नहीं. हम अलग बैठेंगे, अलग गुट से हम बैठेंगे. इसलिए तो हम स्पीकर का चिट्ठी दे दिया है.
1: जगदीश जी, ऐसा क्या रहा कि इलेक्शंस के बाद ये निर्णय किया गया? वेस्ट बंगाल में देखें तो MLAs दूर हो गए, लोकसभा में देखें तो सारे MPs ने ये फैसला लिया. 20 लोग आप बता रहे हैं कि
2: देखिए, पहले जो इलेक्शन का बात, हमारा जो बंगाल में जो CM है शुभेंदु अधिकारी, वो जो काम कर रहा है, अभी तक जो काम किया है एवं अगले दिन में जो काम किया है, ये हमारा मन में बहुत अच्छा लगा. क्योंकि CM अभी बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जितना सोचता है वो बहुत ज़्यादा पता है, हमारा मन में खूब पसंद हुआ. इसलिए बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा. और हमको जो डिमांड है उसका पास, हम वो डिमांड रखेंगे. और ये डिमांड पूरी करने के लिए वो शुभेंदु जी ने हमको साथ बैठा है, वादा किया है, हमारा जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा और इलाका के डेवलपमेंट के लिए जो काम है वो करेगा।
1: तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद से हमारी सुबह बात हुई, उन्होंने कहा कि जो बागी सांसद हैं वो लोगों को थ्रेटन किया गया, उन लोगों पर प्रेशराइज कर उनसे सिग्नेचर कराया गया, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की
2: कीर्ति आज़ाद जो बोल रहे हैं ना, वो तो बिहार का आदमी है, वो तो बंगाल में नहीं है, वो जानते नहीं इलेक्शन का बाद हमारा इलाका में कितना आदमी घर छोड़ा है, कितना आदमी का घर तोड़ा है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बंगाल में नहीं रहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहता है। हम जानते हैं कितना दुख हमारा होता है, हर दिन 200-300 लोग हमको फ़ोन किया है, दादा हमारा लिए कुछ तो करो, हम कब घर जाएंगे, हम कब लौटेंगे हमको परिवार का साथ। तो इसलिए हमको मन में दुख है, कीर्ति आज़ाद के मन में कोई दुख नहीं, वो तो बिहार के रहने लिए है, वो तो वर्तमान में नहीं रहता है क्योंकि वो बीरभूम में नहीं रहते हैं, तो जानते क्या है, जो इलाका में रहता है उसको जानता है इलाका का सिचुएशन क्या है, लोग का डिमांड क्या है, लोग क्या चाहता है वो हम जानते हैं, कीर्ति आज़ाद नहीं जानते हैं, वो दूसरे वाला जगह में रहने वाले लोग नहीं जानता है, इसलिए वो बात बोलना।
1: आपने कब सिग्नेचर किया सर?
2: हम पहले दिन में किया है, जो दिन सिग्नेचर हुआ है उस पहले दिन में हम किया है।
1: फिर उसके बाद और भी मीटिंग्स हुई और भी सिग्नेचर्स किए गए, ऐसे नंबर्स बढ़ते गए?
2: हाँ, पहले दिन सायनी आया है, मिताली आया है, मालार आया है, हम पहले दिन 14 लोग था, उसके बाद रचना बनर्जी।
0: Come Monday, you could see huge political realignments also taking place. We're going to leave you with that breaking news that the Rebel TMC MPs will be meeting with the Lok Sabha Speaker on Monday. Simply a short break. News and updates will continue in moments from now. Stay tuned to NDTV.

0: ले हैं तमाम,
1: मंडे को मिलने।
0: आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लिस्ट आई है, जो सिग्नेचर्स हुए, वो किस तरीके से हुए, क्या कुछ प्रोसेस रहा, क्या कुछ सांसदों का कहना है, क्या आपत्ति दर्ज कराई गई, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें।
1: सब सांसद मिलकर हमने डिसीजन लिया कि हम स्पीकर को पास जाएंगे और अलादा गुट बनाने के लिए, टीएमसी के अलादा गुट बनाने के लिए हम स्पीकर का पास दावा रखेंगे। इसलिए हम सांसद ने एक साथ मिलकर ये सही किया,
0: एक अलग गुट बनाएंगे और एनडीए को आउटसाइड सपोर्ट देंगे लोकसभा में। और आप तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी फैक्शन के सांसद हैं, तमाम जो लोग हैं, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद, उन लोगों के साथ में बैठना नहीं पसंद करें?
1: नहीं, एकदम नहीं, हम अलग बैठेंगे, अलग गुट से हम बैठेंगे, इसलिए तो हम स्पीकर का चिट्ठी दे दिया है।
0: जगदीश जी, ऐसा क्या रहा कि इलेक्शंस के बाद ये निर्णय किया गया? वेस्ट बंगाल में देखें तो MLAs दूर हो गए, लोकसभा में देखें तो सारे MPs ने ये फैसला लिया, 20 लोग आप बता रहे हैं।
1: देखिए, पहले जो इलेक्शन का बात, हमारा जो बंगाल में जो CM है शुभेंदु अधिकारी, वो जो काम कर रहा है, अभी तक जो काम किया है एवं अगले दिन में जो काम किया है, ये हमारा मन में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये CM अभी बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जितना सोचता है वो बहुत ज़्यादा पता है, हमारा मन में खूब पसंद हुआ। इसलिए जो बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा, और हमको जो डिमांड है उसका पास, हम वो डिमांड रखेंगे, और ये डिमांड पूरी करने के लिए वो शुभेंदु जी ने हमको साथ बैठा है, वादा किया है, हमारा जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा और इलाका के डेवलपमेंट के लिए जो काम है वो करेगा।
0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद से हमारी सुबह बात हुई, उन्होंने कहा कि जो बागी सांसद हैं वो लोगों को थ्रेटन किया गया, उन लोगों पर प्रेशराइज कर उनसे सिग्नेचर कराया गया, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की?
1: कीर्ति आज़ाद जो बोल रहे हैं ना, वो तो बिहार का आदमी है, वो तो बंगाल में नहीं है, वो जानते नहीं इलेक्शन का बाद हमारा इलाका में कितना आदमी घर छोड़ा है, कितना आदमी का घर तोड़ा है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बंगाल में नहीं रहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहता है। हम जानते हैं कितना दुख हमारा होता है, हर दिन 200-300 लोग हमको फ़ोन किया है, दादा हमारा लिए कुछ तो करो, हम कब घर जाएंगे, हम कब लौटेंगे हमको परिवार का साथ। तो इसलिए हमको मन में दुख है, कीर्ति आज़ाद के मन में कोई दुख नहीं, वो तो बिहार के रहने के लिए है, वो तो वर्धमान में नहीं रहता है क्योंकि वो बीरभूम में नहीं रहते हैं, तो जानते क्या, जो इलाका में रहता है उसको जानता है, इलाका का सिचुएशन क्या है, लोग का डिमांड क्या है, लोग क्या चाहता है वो हम जानते हैं, कीर्ति आज़ाद नहीं जानते हैं, वो दूसरे वाला जगह में रहने वाले लोग नहीं जानता है, इसलिए वो बात बोलना।
0: आपने कब सिग्नेचर किया सर?
1: हम पहले दिन में किया है, जो दिन सिग्नेचर हुआ है उस पहले दिन में हम किया है।
0: फिर उसके बाद और भी मीटिंग्स हुई और भी सिग्नेचर्स किए गए, ऐसे नंबर्स बढ़ते गए?
1: हाँ, पहले दिन सायनी आया है, मिताली आया है, मालार आया है, हम पहले दिन 14 लोग था, उसके बाद रचना बनर्जी, यूसुफ पठान आया, मालार आया, सायनी घोष आया, और 2-4 जन बाद में आया।
0: एक सवाल यहाँ पर खड़ा भी हो रहा है कि क्या आप इलेक्शन कमीशन के दरवाजे भी खटखटा सकते हैं, 2/3 नंबर?
1: पहले वाला जो काम है स्पीकर का, वो घुटने का जो दावी, उसका दावी पूर्ण होने का बाद हम दूसरा काम करेंगे। पहले तो एक काम, हम स्पीकर का पास जो चिट्ठी भेजा है वो चिट्ठी अगर मान्यता हमको मिली तो हम दूसरा काज में जाएंगे।
0: नाराज़गी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से रही है क्या?
1: ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़गी तो अभिषेक बनर्जी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी जो आज जो जगह में गया है तो इनका थोड़ा दायित्व तो ममता बनर्जी के है। अभिषेक बनर्जी हुआ कैसे हुआ, ममता बनर्जी अगर उसका सपोर्ट नहीं दिया तो अभिषेक, आजको अभिषेक होना होता नहीं होता, तो ये ममता बनर्जी अंधो धृतराष्ट्र को तरफ काम किया है, भतीजा जो कुछ करता है ममता बनर्जी देखता नहीं है। इसलिए पार्टी का हालात ये खराब हो।
0: क्या और भी सांसद आप लोगों के टच में?
1: देख आप देखेंगे, देखा जाएगा दो चार दिन के बाद, फिर कोई सांसद आएगा तो जरूर आएगा।
2: All right, we have Aishwarya who's been speaking to the Rebel MPs joining us live. Aishwarya, news also coming in that the West Bengal Chief Minister could be in the national capital a day before this meeting.
0: Well, that's right. Sources clearly informing to us that there will be a meeting that will take place with the Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari. Of the rebel Trinamool Congress MPs, still the rebel MPs are claiming that the number may rise to 21 or 22. Few more MPs are in touch, but the list that they have the specific number of 20 MPs. They will meet the senior leadership of the Bharatiya Janata Party as well. This will be just a day ahead of the meeting with Lok Sabha Speaker Om Birla. That's been confirmed by Jagdish Bajunia, rebel Trinamool Congress MP, that the speaker have given them a specific time to meet on Monday. And certainly the demands that they have put forward, number one, to give outside support to the NDA, and number two, to change the seating arrangements with the Mamata Banerjee faction of the Trinamool Congress. So these 20 MPs would like to sit separately. Now remember, DMK already in the Lok Sabha had urged the Lok Sabha Speaker to change their seating arrangement with the Congress party as well. And now the Trinamool Congress 20 MPs would be sitting if permission being granted by the Lok Sabha Speaker. So certainly it is going to be very crucial day for the Trinamool Congress as to how Lok Sabha Speaker will be admitting, whether they will be admitting their demands or not. But certainly it is very clear that Kakoli Ghosh faction has the number of 20 MPs with her. The number might increase, as being told by the rebel MPs faction, that just not in Lok Sabha but in Rajya Sabha so far.
2: Very quickly,
0: it's just
2: Aishwarya,
0: three MPs who have been resigned.
2: Yes,
0: but the numbers might
2: very quickly
0: increase.
2: What should we expect on Monday once that meeting takes place? You have two factions claiming that the real TMC party. What should we expect? The ball now in the speaker's court.
0: Well, certainly, first step, as being told by Mr. Basunia, is to approach the Lok Sabha Speaker, as they are still the Member of Parliament. So, being the guardian for them, it will be Lok Sabha Speaker who will be deciding whether to admit those demands or not. Second, at the later stage, with the Bharatiya Janata Party leaders or their strategists being speaking to them as to what needs to be done with this particular group, whether they need to approach the Election Commission to stake claim that they are the original Trinamool Congress, because 2/3 is the number which they have. Certainly that will happen at a later stage, but the first step that they wanted to do is to meet the Lok Sabha Speaker, inform them about their decision about this particular group not being with the faction of Mamata Banerjee Trinamool Congress, and also the seating arrangement needs to be changed. This will be decided by the Lok Sabha Secretariat after Om Birla meeting them.
2: All right, Aishwarya, thanks for joining us live and bringing us the latest. The latest being that the West Bengal Chief Minister could be in Delhi by Sunday evening, a day ahead of that meeting between the rebel TMC MPs and the Lok Sabha Speaker. But let's just bring you more details. Trouble clearly mounting for Mamata Banerjee as the rebellion grows within her party. As per sources, rebel TMC MPs will be meeting with the Lok Sabha Speaker on Monday. Meanwhile, NDTV has accessed the full list of TMC MPs in the rebel camp. Kakoli Ghosh Dastedar, Shatabdi Roy, Yusuf Pathan, Sharmila Sarkar and June Malia among the signatories in that list submitted to the Speaker. There are currently 19 signatures on the document. One slot at serial number 13 has been deliberately left vacant, with sources indicating that a significant political figure could still join the rebel camp. At the heart of the rebellion is growing anger against Abhishek Banerjee, with several rebel leaders accusing him of arrogance and excessive control over the organization. My colleague Padmaja Joshi has spoken exclusively to Arup Chakraborty, whose name is also a part of the rebel MPs list.
3: Arup ji, to 20 naam ab hain asli TMC ke paas, 20 naam hain.
4: Yes. हम लोग सब सिग्नेचर करके दे दिया है, समझे ना?
3: आप ये बता पाए
4: टू सेव द प्रेस्टीज ऑफ द टीएमसी, वी ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वी हैव साइंड ए पेपर एंड deposited to the Honorable Speaker and one to demand to allotment our seats. इकट्ठा हम बैठ के हम बात कर सके चर्चा कर सके सरकार का काम आगे बढ़ाने सके ठीक है ना हम सब एक मिल के करने चाहता है काम कि डबल इंजन का सरकार से कैसा काम बढ़ता है वो हमको देखना है
3: अच्छा आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं यानी कि आप अब बीजेपी में हिस्सा बन जाएंगे आप सब बीजेपी का हिस्सा होंगे आप एनडीए का हिस्सा होंगे
4: नो नो नो नो टीएमसी टीएमसी का काम करेगा बीजेपी बीजेपी का काम करेगा और द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम दोनों मिलके काम करेगा इफ रिक्वायर्ड टीएमसी को बीजेपी सपोर्ट करेगा इफ रिक्वायर्ड बीजेपी हमसे मदद मांगेगा हम भी सपोर्ट करेगा मिलजुल के हम काम करेगा
3: ओके लेट्स टेक दिस वन बाय वन मिस्टर चक्रवर्ती व्हेन डिड यू साइन दिस लेटर
4: बिफोर 3 or 4 days I am admitted at hospital. I am admitted at hospital. I am not getting any chance to appear there in the meeting. But when I came to know that our honorable chief minister is coming from Calcutta to meet with the MPs, then I take 2 hours time from the hospital authority. And meet with them, with Shubhendu Adhikari and other leaders and other MPs, and sign on the paper.
3: You're saying you signed this letter 3-4 days ago. We were being told that this has been signed on the 18th of May. Can you please confirm that?
4: Pardon?
3: We were told that this letter had been signed on the 18th of May. Can you please confirm to us exactly when did you put your signature on this letter?
4: हमारा 8 नंबर में नाम था नंबर 8
3: आपका जी आपका 8 नंबर पे नाम है आपने 4 दिन पहले ही अपना नाम डाला है इस चिट्ठी पे
4: सेकंड डे हाँ
3: अच्छा 4 दिन पहले आपने डाला आपने स्पीकर को कर दिया
4: ऑन दैट पर्टिकुलर डे वी हैव साइन मिनिमम 16 to 18 नेम्स
3: When did you give this letter to the speaker, to the Lok Sabha speaker?
4: We have signed the papers and handed over to our leader, that is Kakoli Ghosh Dostedar.
3: Okay.
4: Okay.
3: Can you confirm if it has been given to the speaker yet?
4: On that time, Mr. Shubhendu Adhikari also with us, the Chief Minister of West Bengal, honorable guest, we will meet with him also. And discuss it okay. And fight. Okay?
2: All right, we've got you the voices of the TMC rebel MPs. Now it's time to even get your voice from the Mamata Banerjee faction. NDTV has exclusively spoken to the TMC MP Kirti Azad over this list accessed by us. Listen in.
5: Letter has come out with the signatures of the rebel MPs. What you wanted to say on the pattern of these signatures which have been done? Because you were yesterday claiming that the letter has not been out, so all the 28 MPs are with you.
6: Well, this is the Nehru lover, Nishikant Dubey, who's been releasing these lists from his place. I know very well. I have certain people in his own house. Give me all information from there. And he may have the entire list, but he's given a list which is not complete. You see, the first 8 have signed in one ink, which were ready, we agreed with whatever arms that they got. Some were threatened. I know 3 of them were threatened in that group where houses were broken down. So those 8 are in one ink. And then you have 8 from 14 to 18 in another ink, in gel. And then you have 3 Muslims together. Then you have Mitali, who was again forced. These are all added later. And then you have Mala Roy, who signed day before yesterday. So all that is happening, we know this Operation Lotus had failed and now cajoling, coaxing, well, let the traitors go.
5: Sir, the Trinamool Congress rebel MPs, Kakoli Ghosh is also stating that they have the numbers with them. 20 is the number, 2/3 is the majority, and soon they will be saying that they will be the original, asli TMC. What's your response?
6: Can't be. can't be the asli TMC. For simple reason, they have to have a president, they have to have a secretary, they have to have a setup. You can't just go and say that I'm the asli TMC. The election commission gives you the recognition. Who's at the election commission? Who's recognized? Who's the president? Who's the secretary, general secretary? All those things are there. You can't just do anything. I mean, this BJP can do anything. This has happened in Maharashtra. So, dirty tricks department can do anything.
5: So, lastly, you are also making the claims that these MPs have been threatened by the Bharatiya Janata Party leaders or the West Bengal government.
6: Only 8 were there in the first list.
5: Mm-hmm.
6: Only 8. Can't you see that list of 8? Only 8. And then, I think... The other from 9 to 13 that has not come in to me, either he's forgot to send it or he's done it purposely, or maybe there are some cuts there. But it's a foregone conclusion for us. It doesn't matter. Let them go. Mamata Banerjee, people give vote to Mamata Banerjee, not to people. So let them go. We know. Good riddance of bad rubbish.
5: Are you still...
6: Thank you.
5: Are you still saying, sir, you are in touch with these MPs, sir? The rebel MPs?
6: Yes. Many of them told me, like they have taken away my police cover. They took police cover away from those. Then their houses were ransacked. The BJP guys were inside. The police was outside. The police was guarding that nobody else should come. Go and see, there are tapes of Bhapi Aldar, Mithali, others. You see, the BJP goons, the way they are insulting the MPs, the BJP goons. You see what they did to Abhishek Banerjee. Everybody's forgotten that. You remember that brick that was hit? Had he not been wearing that helmet, just imagine what would have happened to him.
7: तक 20 है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी. अब तक 20 है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं. और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी.
8: साइनी के साथ मेरा बात हुआ 4-5 दिन पहले. वो तो बोल रही थी कि वो पार्टी में ममता बनर्जी के साथ रहेगी. अभी तो सुन रहा हूँ कि वो साइन किया. आज अखबार में देखा कि वो दिल्ली से एक तो सनग्लास पहन के मुंह पे मास्क लगा के कलकत्ता पहुँचा. और क्या बोल सकते. ये सब नाटक है. अगर ममता बनर्जी के साथ रहना है तो रहो. अलग साइन क्यों कर रहे हो? स्पीकर के पास क्यों जा रहे हो? अमित शाह के पास जाने के बाद क्यों कर रहे हो? ये दुखलापन सही नहीं है.
9: द रिब इन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टीएमसी स्पेशली इन द एमपीज. Now it has become widened, and as a result, this kind of incidents are happening. And from the beginning, the senior leadership of TMC, they were not at all happy regarding the parachute landing of Abhishek Banerjee as a second most top leadership of TMC. So now these things are coming out because TMC is the out of the power.
10: और जितना अपराध हुआ है उनके जमाने में इन लोगों के द्वारा हुआ है. नीचे से ऊपर तो सब लोग लिप्त हैं. उसकी इंक्वायरी चल रही है और जैसा तब से आएगा कार्रवाई होगा.
2: Amid the crisis in Mamata Banerjee's Trinamool Congress Party, Congress MLA Nana Patole has suggested that like-minded parties should come together not just for an alliance but for a merger. Patole also revealed that a similar proposal had earlier been discussed with Sharad Pawar while clarifying that the Congress has not formally offered a merger to any party. Adding fuel to the debate and to the speculation, former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has said parties that originally emerged from the Congress should return to the parent party and argued that the India bloc should project Rahul Gandhi as its leader. Not only Congress but Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut also backed this idea and said that Sharad Pawar should come forward and facilitate the merger.
11: NCP ka already pehle hi prastav tha vilin karna ka. To already abhi sabko ye lagta hai ki जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्था को खत्म करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्य की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है।
12: मेरा तो मानना है कि ये पार्टियों का, संजय राउत का उस बात में दम है, वक्त आ गया, अभी लड़ाई लड़नी है डेमोक्रेसी को बचाने की। डेमोक्रेसी को बचाने की जब लड़ाई युद्ध के मैदान में हम लोग हैं, तो संजय राउत का मैं सपोर्ट करता हूँ कि ये सब पार्टियों के जो रीजनल पार्टी बन गई कांग्रेस अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए और राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए दिल से, पहले से पूरे मुल्क में ये मैसेज होना चाहिए। अब इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं, ये मैसेज क्लियर होना चाहिए, तब जनता आपको कामयाब करेगी।
13: नहीं बघा, प्रस्ताव है आता, त्यांचे इंटरनल प्रस्ताव काय असतील हा त्यांचा प्रश्न आहे, पण काँग्रेस हा अधिक मजबूत व्हायला पाहिजे देशामध्ये। काँग्रेसमधून निघालेले जे लहान पक्ष किंवा नेते आहेत, त्यांनी देशाची परिस्थिती समजून घ्यायला पाहिजे आणि त्यानुसार एक मजबूत अशी काँग्रेस, अखंड काँग्रेस एक प्रबळ पर्याय म्हणून देशामध्ये उभी राहायला पाहिजे। पवार साहेबांनी या संदर्भात पुढाकार घेतला पाहिजे। माननीय शरद पवारांनी ही जी विचारधारा किंवा भूमिका बनते एकत्र येण्याची, त्या संदर्भात जर त्यांनी नेतृत्व केलं, पुढाकार घेतला, तर हा विचार खूप पुढे जाईल।
2: In news just coming in, the Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has taken an indirect swipe at the Shiv Sena leader Sanjay Raut over the ongoing merger buzz. Without naming Raut, Fadnavis dismissed the speculation, asking who is even talking about a merger. Fadnavis said he believes leaders on the other side are politically astute and will take the right call, suggesting they are unlikely to align with what he described as a quote-unquote sinking Congress. He added that even if a merger were to happen, it would only benefit his party by opening up additional political space. For now, Fadnavis maintained that the BJP, of course, is not really impacted by the talks of a merger. So that's the latest that we have on the story. You have a lot of political reactions coming in. You have the BJP mocking the possibility of a merger, saying that if there's any benefit, it will be to the BJP party because there will be more political opportunities, more space for their politics within this alignment, if any. But this has, of course, emerged ever since the Trinamool Congress has been facing one of its biggest challenges, with Mamata Banerjee's party imploding. More than 19, or at least 19 TMC MPs who have now pushed for a separate entity but want the name of the Trinamool Congress Party to be theirs. And while there is that huge fracture within the Trinamool Congress, there are murmurs politically of the opportunity before the opposition parties for them to come together and form a merger. There are voices from the Congress, from the Shiv Sena UBT emerging at this point. Abhishek is now joining me live on the story. Abhishek, we just heard from Devendra Fadnavis, but just tell us, what are the murmurs emerging from the opposition parties? We've heard from the Congress, we've heard from the Shiv Sena, but what really is the inside track? This seems to be really far-sighted in many ways, if I may, given that the India bloc itself has had so many issues in the past.
14: Definitely, we will have to understand from when, where does all this has began from. You know, it was the comment, or you can say the suggestion, made by Sanjay Raut, where he said that, you know, time has come right now, all those parties which has parted ways from the Congress, you know, like how we have seen NCP, Sharad Pawar's NCP, formation of NCP from the Congress, TMC has been formed from the Congress. So this statement, or you can say the suggestion that has came from Sanjay Raut, and that has now into talks of merger, of alignment of NCP, TMC with the Congress is now has emerged, and to which the Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Maharashtra, has taken a direct dig at, because you know he clearly pointed out that there is no role or there is no significance of someone who is making such comments, because he was taking a direct dig at Sanjay Raut, where he said that Begani Shadi mein Abdullah Diwana. And more importantly, he emphasized on the fact that, you know, the parties of which merger with Congress is going on, those leaders are smart enough to make a preferred choice. You know, they will not board a sinking ship. And he directly hit out at Congress and said that Congress is a sinking ship at this given point of time, and these leader will not make such kind of a decision. And he also went out to say, let's hypothetically take a point that if they merge, and definitely it will only benefit the BJP. So definitely the talks of merger, the speculation around it is at its peak currently.
2: Abhishek, I'm sorry, I will have to interrupt you there because there is some breaking news coming in. India's top court, the Supreme Court, has rejected the plea by Congress leader Meenakshi Natarajan. The Supreme Court has refused to interfere with the order rejecting her nomination to the Rajya Sabha over non-disclosure of a criminal case in a Telangana bench of justices. That's the latest that we have for you. Setback for the Congress, setback for Meenakshi Natarajan. This has to do with her Rajya Sabha nomination, and the Supreme Court has said that they will not interfere. We have Nupur joining me live, Nupur Dogra joining me live from the national capital. Setback for Meenakshi Natarajan there, Nupur. What are the remedies that lie before her, and what happened in court today?
15: Well, Vedika, the Supreme Court heard briefly arguments presented by all the sides, including the Election Commission of India, the Congress and other independent candidates who were opposing Meenakshi's petition. The Supreme Court concluded that it cannot make any exception for Meenakshi and said that as the law exists today, she has to go to the High Court with the election petition, and Supreme Court cannot create exceptions. And there is no previous precedent or there is no previous judgment to show that Supreme Court at this stage can entertain her petition under Article 32, which is in fact was the same case opposed by the other candidates, saying that there is no fundamental right to contest election. So Meenakshi had approached the Supreme Court under Article 32 challenging her exclusion. However, the top court said that under existing law, as per law, the Supreme Court at the outset cannot interfere with the RO order and thus have dismissed her petition, though she has a liberty to challenge her case and file an election petition at the High Court level first.
2: All right, thanks for joining me live. That's a setback not only for Meenakshi Natarajan but the party as well. Remember, earlier today we also saw Congress MLAs taking to the streets from the Congress office to the Rashtrapati Bhavan, and they were detained. There is a live reaction coming in.
16: क्या निराशा है मैम किसी प्रकार की निराशा?
17: नहीं, कोई निराशा नहीं है. हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं. हमारी पूरी पार्टी इकट्ठा है. इससे बड़ी आशा की बात और क्या हो सकती है?
16: अब क्या जो आप सीट चोरी का एलिगेशन लगा रहे थे, आप लोग क्या अभी भी
17: सीट चोरी तो बहुत स्पष्ट है और सबके सामने है. उस पर मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं.
18: राहुल गांधी ने कहा है कि ये गलत हुआ है.
17: बिल्कुल, सीट चोरी है ये तो सभी लोग जानते हैं.
18: प्रदेश में एक रवैया और झारखंड में एक रवैया,
17: ये तो हम लोग कल से कह रहे हैं, उसी दिन से कह रहे हैं जिस दिन से ये स्क्रूटिनी की प्रक्रिया हुई. और हम सब जानते हैं कि एक तरफ कॉरपोरेट जगत के एक व्यक्ति के लिए एक कानून बनता है और जो संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए दूसरा कानून बनता है.
18: मैम, पहले कोई पिटीशन होती थी, अगर चुनाव आयोग से आप संतुष्ट नहीं है तो आप जाते थे सुप्रीम कोर्ट. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही कह दे कि तो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो क्या होगा?
17: इसीलिए मैंने आपसे कहा, हम हमारे पार्टी के सब वरिष्ठों से बातचीत करके अपना अगला जो कदम हमें उठाना है वो करेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के लिए हम हमेशा स्वतंत्र हैं और वो करेंगे. ये सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील के आधार पर नहीं किया. कानूनी भाषा में तो वकील ही आपको कह पाएंगे कि उन्होंने, क्योंकि वो वहां पर थे और ऑर्डर की कॉपी आने के पहले मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फॉर्म 26 के आधार पर नहीं. उन्होंने एक ये कहा कि इस तरह के मामलों में इलेक्शन पिटीशन होता है, जो जितना मैं समझ पाई. किसी प्रकार का कोई झटके की कोई बात नहीं. इस देश में हम लोगों के झटके से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जो लोकतंत्र पर झटके के झटके लग रहे हैं उसकी चिंता हमको करनी चाहिए। ये कोई व्यक्तिगत हार या हानि नहीं है। मैं अभी ये तय नहीं करूंगी, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी की प्रत्याशी थी, पार्टी जो भी तय करती है और वरिष्ठ नेता जो

0: details for Suvendu Adhikari to meet with those rebel Trinamool Congress MPs. So let's take you through all the developments that have taken place on this front. Trouble mounting for Mamata Banerjee as the rebellion grows. According to sources, the rebel MPs will be meeting the Lok Sabha Speaker on Monday. That's something we knew earlier, that they were planning to meet the Lok Sabha Speaker, now also meeting with the Bengal Chief Minister on Sunday. Meanwhile, NDTV accessed the full list of Trinamool Congress MPs in the rebel camp. Kakoli Ghosh Dastedar, Shatabdi Roy, Yusuf Pathan, Sharmila Sarkar and June Malia are among the signatories in the list submitted. There are currently 19 signatures on the document. One slot at serial number 13 has been deliberately left vacant, with sources indicating that a significant political figure could still join the rebel camp. At the heart of the rebellion is growing anger against Abhishek Banerjee, with several rebel leaders accusing him of arrogance and excessive control over the organization.
1: One of the rebel Trinamool Congress MP, Jagdish Chandra Basunia, is with me. We will directly ask him, sir, Monday ko samay de diya gaya hai Lok Sabha Speaker ki taraf se, aap milne wale hain tamam?
2: Monday ko milne wale.
1: Aap se ye janna chahenge ki jo list aayi hai, jo signatures huye, wo kis tarike se huye, kya kuch process raha, kya kuch sansadon ka kehna hai, kya aapatti darj karai gayi, agar aap hamare darshakon ko bata sakte.
2: सब सांसद मिलकर हमने डिसीजन लिया कि हम स्पीकर को पास जाएंगे और अलादा गुट बनाने के लिए टीएमसी के अलादा गुट बनाने के लिए हम स्पीकर के पास दावा रखेंगे. इसलिए हम सांसद ने एक साथ मिलकर ये सही किया.
1: एक अलग गुट बनाएंगे और एनडीए को आउटसाइड सपोर्ट देंगे लोकसभा में, और आप तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी फैक्शन के सांसद हैं, तमाम जो लोग हैं, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद, उन लोगों के साथ में बैठना नहीं पसंद करें?
2: नहीं, एकदम नहीं. हम अलग बैठेंगे, अलग गुट से हम बैठेंगे. इसलिए तो हम स्पीकर का चिट्ठी दे दिया है.
1: जगदीश जी, ऐसा क्या रहा कि इलेक्शंस के बाद ये निर्णय किया गया? वेस्ट बंगाल में देखें तो MLAs दूर हो गए, लोकसभा में देखें तो सारे MPs ने ये फैसला लिया. 20 लोग आप बता रहे हैं कि
2: देखिए, पहले जो इलेक्शन का बात, हमारा जो बंगाल में जो CM है शुभेंदु अधिकारी, वो जो काम कर रहा है, अभी तक जो काम किया है एवं अगले दिन में जो काम किया है, ये हमारा मन में बहुत अच्छा लगा. क्योंकि ये CM अभी बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जितना सोचता है वो बहुत ज़्यादा पता है, हमारा मन में खूब पसंद हुआ. इसलिए कि बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा, और हमको जो डिमांड है उसका पास, हम वो डिमांड रखेंगे. और ये डिमांड पूरी करने के लिए वो शुभेंदु जी ने हमको साथ बैठा है, वादा किया है, हमारा जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा और इलाका के डेवलपमेंट के लिए जो काम है वो करेगा.
1: तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद से हमारी सुबह बात हुई, उन्होंने कहा कि जो बागी सांसद हैं वो लोगों को थ्रेटन किया गया, उन लोगों पर प्रेशराइज कर उनसे सिग्नेचर कराया गया. आपको क्या लगता है कि इस तरीके की
2: कीर्ति आज़ाद जो बोल रहे हैं ना, वो तो बिहार का आदमी है, वो तो बंगाल में नहीं है. वो जानते नहीं इलेक्शन का बाद हमारा इलाका में कितना आदमी घर छोड़ा है, कितना आदमी का घर तोड़ा है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तो बंगाल में नहीं रहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहता है. हम जानते हैं कितना दुख हमारा होता है. हर दिन 200-300 लोग हमको फ़ोन किया है, दादा हमारा लिए कुछ तो करो, हम कब घर जाएंगे, हम कब लौटेंगे हमको परिवार का साथ. तो इसलिए हमको मन में दुख है, कीर्ति आज़ाद के मन में कोई दुख नहीं. वो तो बिहार के रहने के लिए आए, वो तो वर्धमान में नहीं रहता है, क्योंकि वो वीरभूम में नहीं रहते हैं. तो जानते क्या, जो इलाका में रहता है उसको जानता है, इलाका का सिचुएशन क्या है, लोग का डिमांड क्या है, लोग क्या चाहता है वो हम जानते हैं. कीर्ति आज़ाद नहीं जानते हैं, वो दूसरे वाला जगह में रहने वाले लोग नहीं जानता है. इसलिए वो बात बोलना.
1: आपने कब सिग्नेचर किया सर?
2: हम पहले दिन में किया है, जो दिन सिग्नेचर हुआ है उस पहले दिन में हम किया है.
1: फिर उसके बाद और भी मीटिंग्स हुई और भी सिग्नेचर्स किए गए, ऐसे नंबर्स बढ़ते गए?
2: हाँ, पहले दिन सायनी आया है, मिताली आया है, माला राय आया है. हम पहले दिन 14 लोग था, उसके बाद रचना

0: ബാനർജി, യൂസുഫ് പഠാനായ, മല്ലാറായ, സായനി ഘോഷായ, ദോ ചാർജൻ ബാദ്മേ ആയ.
1: एक सवाल यहाँ पर खड़ा भी हो रहा है कि क्या आप इलेक्शन कमीशन के दरवाजे भी खटखटा सकते हैं, दो तिहाई नंबर?
0: पहले वाला जो काम है स्पीकर का, वो घुटने का जो दावी, उसका दावी पूर्ण होने का बाद हम दूसरा काम करेंगे. पहले तो एक काम हम स्पीकर का पास जो चिट्ठी भेजा है, वो चिट्ठी अगर मान्यता हमको मिली तो हम दूसरा काज में जाएंगे.
1: नाराजगी अभिषेक बैनर्जी और ममता बैनर्जी से रही है क्या?
0: ज़्यादा से ज़्यादा नाराजगी तो अभिषेक बनर्जी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी जो आज जो जगह में गया है, तो इनका थोड़ा दायित्व तो ममता बनर्जी के है. अभिषेक बनर्जी हुआ कैसे हुआ, ममता बनर्जी अगर उसका सपोर्ट नहीं दिया तो अभिषेक, आज को अभिषेक होना होता नहीं होता. तो ये ममता बनर्जी अंधो धृतराष्ट्र को तरफ काम किया है. भतीजा जो कुछ करता है ममता बनर्जी देखता नहीं है, इसलिए पार्टी का हालात ये खराब हुआ.
1: क्या और भी सांसद आप लोगों के टच में?
0: आप देखेंगे, देखा जाएगा. दो चार दिन के बाद फिर कोई सांसद आएगा तो जरूर आएगा.
2: And my colleague Padmaja Joshi also spoke to Arup Chakrabarti, whose name is also on the list of rebel MP. She asked him, when did he sign this list? Listen into what he said.
3: Arup ji, to 20 naam ab hain asli TMC ke paas, 20 naam hain.
4: Yes, hum log sab signature karke de diya hai. Samjhe na,
3: ab ye bata paye
4: to save the prestige of the TMC. We all elected members of the parliament. We have signed a paper and deposited to the honorable speaker and one to demand to allotment our seats. Ekatha hum baith ke hum baat kar sake, charcha kar sake, sarkar ka kaam aage badhane sake. Theek hai na, hum sab ek mil ke karne chahta hai kaam. Double engine ka sarkar se kaisa kaam badhta hai wo humko dekhna hai.
3: अच्छा, आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, यानी कि आप अब बीजेपी में हिस्सा बन जाएंगे, आप सब बीजेपी का हिस्सा होंगे, आप एनडीए का हिस्सा होंगे?
4: नो नो नो नो, टीएमसी टीएमसी का काम करेगा, बीजेपी बीजेपी का काम करेगा, और द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम दोनों मिलके एक काम करेगा. इफ रिक्वायर टीएमसी को बीजेपी सपोर्ट करेगा, इफ रिक्वायर बीजेपी हमसे मदद मांगेगा हम भी सपोर्ट करेगा, मिलजुल के हम काम करेगा.
3: Okay, let's take this one by one, Mr. Chakrabarti. When did you sign this letter?
4: Before 3 or 4 days. I am admitted at hospital. I am admitted at hospital. I am not getting any chance to appear there in the meeting. But when I came to know that our honorable chief minister is coming from Calcutta to meet with the MPs, then I take 2 hours time from the hospital authority and meet with them, with Shubhendu Adhikari and other leaders and other MPs, and sign on the paper.
3: You're saying you signed this letter 3-4 days ago. We were being told that this has been signed on the 18th of May. Can you please confirm that?
4: Pardon?
3: We were told that this letter had been signed on the 18th of May. Can you please confirm to us exactly when did you put your signature on this letter?
4: Hamara 8 number mein naam tha. Number 8.
3: Aapka ji, aapka 8 number pe naam hai. Aapne 4 din pehle hi apna naam dala hai is chitti pe.
4: Second day, ha.
3: Achha, 4 din pehle aapne dala. Aapne speaker ko kar diya.
4: On that particular day we have signed minimum 16 to 18 names.
3: When did you give this letter to the speaker, to the Lok Sabha speaker?
4: We have signed the papers and handed over to our leader, that is Kakoli Ghosh Dostere.
3: Okay.
4: Okay.
3: Can you confirm if it has been given to the speaker yet?
4: On that time, Mr. Shubhendu Adhikari also with us, the Chief Minister of West Bengal, honorable guest. We will meet with him also. and discuss it.
3: Okay.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: द न्यूज आयुष, सिंस व्हेन डू वी डू स्क्रिप्ट्स? फेयर पॉइंट। पिक्चर दिस, द बिगेस्ट स्टेज, फ्लड लाइट्स, 4K, द वर्क्स।
3: वेयर इज द हुक?
2: देयर इज गोना बी सेलिब्रिटीज एंड गारंटीड आईबॉल्स।
3: वेयर इज द हुक?
2: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
3: Bro, where's the hook?
2: Cross-platform, digital first, virality.
3: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You gotta be real in a world of reels. You gotta be original in a world where everything seems generated.
2: That's it. That's what we're looking for.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: द न्यूज़।
4: आयुष, सिंस व्हेन डू वी डू स्क्रिप्ट्स? फेयर पॉइंट। पिक्चर दिस, द बिगेस्ट स्टेज, फ्लड लाइट्स, 4K, द वर्क्स।
5: वेयर इज द हुक?
4: देयर इज गोइंग टू बी सेलिब्रिटीज एंड गारंटीड आईबॉल्स।
5: वेयर इज द हुक?
4: थिंक अबाउट दिस, front page advertisements and hoardings.
5: Bro, where's the hook?
4: Cross platform, digital first, virality.
5: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You got to be real in a world of reels. You got to be original in a world where everything seems generated.
4: That's it. That's what we're looking for.
5: The best campaigns,
4: the hottest trends,
5: the smartest brand moves on our new show.
4: But wait, what do we call it?
5: The hook.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर प्योर मसाला।
9: They say good food speaks for itself, but behind every dish lies a story of talent, a story of precision, a story of obsession, and a story of perfection. We're tracking down the finest culinary minds in the country. We're tracking down the icons and the innovators. The shortlist is ready. The kitchens are battlefields because there's only one criterion, absolute excellence. The tables are set. Join me, Veer Sanghvi, for the NDTV Food Awards

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
4: सो मेनी अटैक्स,
3: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right, and Center.
3: Hard facts.
4: War struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine.
5: In France. In Italy.
4: At Srinagar.
5: I am Mr. France.
4: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा प्योर मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
4: देश का टायर जेके टायर।
5: The news.

0: The next year saw Modi's first national assignment as the organizer of Murali Manohar Joshi's cross-country Ekta Yatra.
1: लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया।